इलेगी लाउट वो चाउट सक्स हो गया मैं आखिर नहीं लाउट चाउट करने अपने नवग में पी वाले पी एनिक पटन सिले ले वही गया मैं आप लोगों ने तमाने की वाले में अम्मा के चंग में उन्हें तसंग ना तमालू तलो तुंगा सुलाओ में किसी तो सायक्समिन